अलकपुर जी महादेव, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन दर, ओम शांति शांति, शांति।

आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव श्री देवा पुरुषा महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद

0: जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय।
1: Okay, one more. One more. Satsang Guru Raghavan.

0: You don't know what's karmakanda.
1: És nem tudjátok, mi ez.
0: We know the karma.
1: Tudjuk, mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
1: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
1: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
1: Hogyha a karmát és kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
1: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
1: Különböző dolgok vannak.
0: So our Acharya Triveda Kapila.
1: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
1: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the karmakand.
1: Elmondja, mi az a karmakand.
0: And the effect.
1: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
1: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tiéd a szó.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं गुरुदेव की शरण में जाते हैं
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग वी वर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस अनुवाद करता हूं So, the Panditji said,
1: Panditji Asmanta.
0: First off, the adoration to our Guru Parampara,
1: Guru Paramparánknak fejezte ki tiszteletét.
0: Then said, we are all blessed one.
1: Te mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So He said, "We are lucky."
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: havanát, jagját, pudzsát fogunk gyakorolni.
0: And so let's go what he said in parable, short sentences. ठीक है, थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं.
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have a easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है. अगर उस पूजन को, उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से, सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है.
0: इन लाइफ मेनी टाइम्स there's up and down.
1: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Jagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
1: वैदिक टू द मैन
0: According to the Vastu Shastra, as I told before, he mentioned.
1: A Vastu Shastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly, the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that. Fireplace for the yagya is like the mouth of the god.
1: A yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन है. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है, और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास विच इन्फ्लुएंसेस द देवास
1: iratok, védek, upanishadok, bantrái hatnak a dévekra.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars so-called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yajna is.
1: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures?
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है। तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें, ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है।
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadgurudev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: That A rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Ek mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
2: Dhyanamulam gurur murti, puja mulam guru padam, mantra mulam gurur vakyam, moksha mulam guru kripa. Dhyan karne ke yogya guru ji ki pratima hai, guru ji ki murti hai. Dhyanamulam gurur murti, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं. पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं. मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा. आप सब एक बार बोलिएगा.

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिष्टनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं, मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

0: विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: Vishvaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jaya.

0: ओम शाला गुरु जी महादेव
1: की जय।
0: वादिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदेव नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरी जी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हरण पार्वती
1: पते हर हर महादेव।
2: शिव भगवान।

गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेव
1: की जय। ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.